0: खुकुरी गाउँमा काठमाडौँबाट डाक्टर आउने बारे सूचना।
1: यही जेठ 8 गते शुक्रबारको दिन
0: पेट, छाती, सुगर प्रेसर, थाइराइड रोग विशेषज्ञ डाक्टर नवीन रौनिया एवं पाइल फिसर फिस्टुला विशेषज्ञ डाक्टर प्रभाकर शाहद्वारा बिरामी जाँच उपचार तथा अपरेशन हुने जानकारी गराउँदछौ। उक्त दिन दम रोगीहरूको लागि फोक्सो सम्बन्धी विशेष जाँच पीएफटी समेत गरिन्छ। स्थान केपी पोली क्लिनिक घुरीगाउँ बर्दिया।
2: अपने सुनती बाती रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ट्ज़।

0: दिनका कामो टाटल बयाल बहक निसेक जाए मै त बिहान नि खेत जाए ना खाए
1: बाबा लोई छाता फेले जाओ खेतवा से लौटा बेर महा कर घाम रखा
0: ए का बिस्नु का बिस्नु कलक त छा त बिसाई टु का हु लान त छाता ओहो मै त एक पानी बोटलिन जीवन जल्दै मिलाइ बिस्नु
1: तु बिस्ताजी ठोकैका मै त मन पानी जीवन जल मिला खाडेर रख्नु बाबा बेन्सु यो पानी भरि सक्कु पिहना पस्ना नसे निकल्क जो सुक्खा हो जाटका
0: पटावा मही अब बिहानका काम दिनका आराम
1: हा त बिहान काम दिनका आराम
2: गर्मी मौसममा लू चिटिङ्गा घामन से बचकला छाटा नकी कपार छोप पनिङ्गी ध्यार से ध्यार पानी पी शरीर जूर ढरकलाग मौसमी फलफूल खाई ओ घर स्कूल के छानी जुरार बनेना जुगार लगाई
3: प्लान इंटरनेशनल नेपाल ओ भेरी वातावरणीय विशेषता समूह बी ग्रुप की साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहल विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता तथा सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के लाग जारी संदेश
4: साइना मेडिकल हल भुरीगाँव में विशेषज्ञ डाक्टर आउने सम्बन्धी सूचना
5: यही जेठ 9 गते शनिबार को दिन
4: बिहान 10 बजे देखि साइना मेडिकल हल भुरीगाँव में रेडियोलोजिस्ट डाक्टर मोनु दहित आउनु हुने हुँदा भिडियो एक्सरे गराई आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गराउनुहोस् दिइने सेवाहरू गर्भवती महिलाको 4-5 महिनामा गरिने एनोमली स्क्यान पाठेघरको जाँच लामो समयसम्म पेट दुख्ने समस्याको जाँच पत्थरीको जाँच पित्त थैली तथा कलेजोको जाँच छातीमा भएको गाँठा गुठीको जाँच थाइराइड स्क्यान सुपरफिसियल स्क्यान लगायत भिडियो एक्सरे सम्बन्धी सम्पूर्ण जाँच हुने हुँदा मौकाको फाइदा उठाउन अनुरोध गरिन्छ सम्पर्क साइना मेडिकल हल भुरीगाउँ बजार बर्दिया वाणिज्य बैंकको पश्चिम पट्टी नाम दर्ताका लागि सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9842555909 र 9842557517
6: रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज नामै काफी छ।

0: यही जेठ 9 गते शनिबारको दिन
1: बिहान 10 बजेदेखि
2: चाइना मेडिकल हल भुरी गाउँमा रेडियोलोजिस्ट डाक्टर मोनु दहित आउनुहुने हुँदा भिडियो एक्सरे गराई आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गराउनुहोस्। दिइने सेवाहरू गर्भवती महिलाको 4-5 महिनामा गरिने एनोमली स्क्यान, पाठेघरको जाँच, लामो समयसम्म पेट दुख्ने समस्याको जाँच, पत्थरीको जाँच, पित्त थैली तथा कलेजोको जाँच, छातीमा भएको गाँठा गुठीको जाँच, थाइराइड स्क्यान, सुपरफिसियल स्क्यान लगायत भिडियो एक्सरे सम्बन्धी सम्पूर्ण जाँच हुने हुँदा मौकाको फाइदा उठाउन अनुरोध गरिन्छ। सम्पर्क चाइना मेडिकल हल भुरीगाउँ बजार बर्दिया वाणिज्य बैंकको पश्चिम पट्टी। नाम दर्ताका लागि सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9842455909 र 9842457517।
3: दिनका कामो टाटल बयाल बक निसेक जाय मै त बिहान नि खेत बजाइ दुना छाइ
4: बाबा लोई छाता खेलै जाओ खेतवा से लौटा बेर महा कररा घाम रठा
3: ए का बिसिनु का बिसिनु कलक त छा त बिसाइ टु का हुँ लान त छाटा ओहो मै त एक पानी बोटलिन जीवन जलझन मिलाइ बिसारनु
4: तु बिस्ताजी ठोकै का मै त मन पानी जीवन जल मिला खडेर रख्नु बाबा बेन सुई पानी भरि सक्कु पि हो ना पस्ना नसे निकल क जु सुक्खा हो जत का
3: पटावा मै अब बिहान का काम दिन का आराम
4: हाँ तो बिहान काम दिन का आराम
5: गर्मी मौसममा लू चिटिङ्गा घामन से बचकला छाता नकी कपार छोपनेगी ध्यार से ध्यार पानी पी शरीर जू ढरक लाग मौसमी फलफूल खाई ओ घर स्कूल के छानी जुरार बनेना जुगार लगाई
6: प्लान इंटरनेशनल नेपाल ओ भेरी वातावरणीय विशेषता समूह बी ग्रुप की साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहल विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता तथा सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के लाग जारी संदेश।